0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: You got me going crazy.
5: Climate change is not a distant threat. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.
6: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
7: शराय तो जवाबित लागू है।
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
9: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी। आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
2: City FM 89, we're playing your song.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
6: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
7: शराय तो जवाबित लागू है.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
9: Welcome back, everyone. Your last song was Daydreamin' by Zayn. Alright, so it's time for fictional travel destinations. Pop culture often builds incredible architecture, defying worlds that make our actual globe feel a little too bound by the laws of physics. Let's dream about checking into places that shouldn't logically exist. So WhatsApp us on 03142898989. If you could open a portal and spend a weekend inside any fictional location solely for the vibe, where are you setting the coordinates? Let us know on 8989. I have one for you today. The gravity-defying metropolis, or the Citadel from Mass Effect. Forget standard city street corners. There we go. Imagine a massive space-faring metropolis built along the inner ring of giant metallic arms floating deep in a nebula. When you look directly up into the sky, you don't see clouds. You see skyscrapers, blue parks, and flying commuter shuttles hanging upside down above you due to artificial centrifugal gravity. It's hyper-clean, neon-lit architectural dream where waterfalls cascade between zero-gravity skyways, offering a completely frictionless view of the cosmos. So yeah, that's my pick. I can't wait to hear yours. All right, let's listen to our next few songs, starting with Taste So Good by Niall Horan.

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: Trending today.
4: Heavyweight producer Timbaland and pop star Khloé have joined forces on a brand new album titled Resurrection. The project is up on all platforms.
1: We are
0: City FM
5: 89. MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
0: सिटी एफएम 89।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: नॉनस्टॉप हिट्स।
8: No talk.
9: No talk.
10: No talk.
11: No talk.
12: No talk.
8: Just you
12: and the music.
8: And the music.
12: Back to back starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m. We are
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m. City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
7: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ. अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में. बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ. आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर. शरायतो जवाबित लागू हैं.
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
0: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. We are
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89. We're playing your song.
4: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।
6: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है, कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री, डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 डेज। आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर। AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर। Book now at www.aeo.com.pk.
7: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. ताकि ये grow करे 50% faster.
8: Dulux दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
2: Deluxe. City FM 89. We're playing the song.
1: You're listening to

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: जैज कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैज कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
5: शराय तो जवाबित लागू है.
0: You're listening to City FM 89.
6: You're listening to...

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show was brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: We're playing your song.
7: Coming up next.
1: Dark Room.
3: City FM 89.
1: On the dial.
4: Trending today.
8: Heavyweight producer Timbaland and pop star Chloe have joined forces on a brand new album titled Resurrection. The project is up on all platforms.
5: City FM 89. We're playing your song.
9: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इनश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इनश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
10: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
11: शराय तो जवाबित लागू है.
5: You are listening to City FM 89.
6: We are playing your song.
12: Hello there, folks. Welcome to another episode of The Dark Room. I'm Tapu Javeri, and we have some incredible music in store for you. I hope you all are staying safe, keeping well, and also not sweating too much. We have some incredible jazz music, and I'm going to start you off with this one. This is Nina Simone with Feeling Good, and a little bit of remixing by Joe Cosell.

0: City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: City FM 89.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।
6: पूरा हफ्ता राबता बरकरार जैज लाजवाब प्लस ऑफर के साथ। अभी *5655 हैश डायल करो और पाओ 8 GB डेटा, 4,000 जैज मिनट्स और SMS और 80 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 370 रुपए के लोड में। बस ऑफर लगाओ और रहो कनेक्टेड जैज के साथ। आपकी मेरी हम सबकी सुपर पावर। शरायतो जवाबित लागू हैं।
2: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: In the Dark Room, City FM 89, I hope you all are staying safe. We have some fabulous music coming your way. FKJ, or French Kiwi Juice as he's actually known. And this is Tadao.

0: Move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराइत जवाबित लागू है।
5: We're playing your song.
1: You're listening to
6: Dark Room with Tapu Javeri.
7: In the Dark Room, City FM 89, a big shout out to my Dark Room family. I hope they all are enjoying themselves. And a big shout out to the wonderful Sam. This is Patricia Cass going out to her with If You Go Away, a Shirley Bassey track, but a little bit remixed, but fabulous nonetheless.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: शरायत ज़वाबित लागू है।
3: City FM 89.9.
6: We're all looking to maximize our potential. Skip the drugs and focus on what truly matters. Channel your energy into your passions, your career, and make meaningful connections. Stay sharp, stay healthy, and stay ahead. Choose productivity. Choose a better life. Stay drug free.
7: You're listening to City FM 89.
8: We are playing your song.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: Attention. The standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
4: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
1: City FM, FM 89.
0: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
1: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
1: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
8: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
0: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m. City FM 89. Playing the song.
3: जैस कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है। अपने जैस कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका। बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
4: शराय तो जवाबित लागू है।
1: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
5: Non-Stop Hits.